0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: तो छैन यार।
1: शहर में भीड़ सब मानसे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो पाप मा ठूलो समेला।

0: छैन कुनै।
1: फिजिसियन डाक्टर लोकराज कणेलद्वारा जाँच तथा उपचार सेवा,
2: साथै बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर महेश चौलाद्वारा पनि सेवा दिइरहेको जानकारी गराउँदछौ।
1: सम्पर्क राणा हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो एरी एफ एम 98.6 हर्रे बाट 102.7 वीरेन्द्र नगर सुर्खेत बाट
1: बुलबुल बुलबुल बुलबुल एउटा इरानी चरा बुलबुल कम्युनिकेशन को रात्रि प्रस्तुति बुलबुल बुलबुल।